नमस्कार रोम साई, प्रणाम लक्ष्मी माई, सलाम बड़े मियाँ, नमस्ते सेठ जी, गुड इवनिंग सर मैडम, जय हो पंडित जी, जय हो जय हो जय हो। आप मेरे का भीख मांगसी बाबूजी माँ लक्ष्मी लक्ष्मी माई, ना ना सोना चांदी कुछ ना, भीख मांगसी एक मन दीबें, कान दीबें, कने शुने मने लिबें, एक गल्प एक कहानी, कने सुनबें मने धरबें। हाँ हाँ बांगला गल्प, हम तो बंगाली आछि, तब भी एखन राष्ट्रभाषा हलो ना, तई थोड़ा कुछ हिंदी बोली, खिचड़ी खान ना खिचड़ी, ये भी खिचड़ी।

एक था राजा, एक छिलो राजा। राजा राज राजेश्वर बादशाह नवाब सुल्तान किंग एम्पोरा, बहुत बड़ा राजा। घोड़ा साले 7,000 घोड़ा, हाथी साले 700 हाथी, रानी साले 7 जोड़ा रानी। और क्या से हीरा मोती सोना चांदी रेशम पश्चम किंगखब जोड़ी लूची पोलाव कुरमा कारी। और क्या से मंत्री कतवाल पत्तर मित्र के रानी पेशकार सिपाही शांत्री नौकर चाकुर दासी बांदी। जय हो राजा।

बाघ होवे ना तो की होवे, लेकिन रानी माता बोले, नहीं बेटा, नहीं मेरा लाल, बहुत दूर, बहुत खतरनाक, मत जाना। और तेरा रानी बोले, और राजपुत्र का तेरा सतीन माता, नहीं बेटा, नहीं मेरा लाल, बहुत दूर, बहुत खतरनाक, मत जाना। रानी माता बोले, जायो ना बेटा, रहो एकान, हम फल खाबो नहीं, जाए जाक प्राण। और तेरा सतीन माता बोले, ना जाना बेटा, छोड़ो जम्बुस्थान, अम्बु फल क्या होगा, जाने दो वो जान। तो युवराज क्या, अलबत जाओ, हरगिज जाना, अम्बुलाना, माँ को देना, फल खिलाना, अशोक बैरम सब भगाना। राजा बोले, सब बेटा, सर का बच्चा आदमी सच्चा, दिल भी अच्छा, यह औरत की बात मत सुना बेटा। औरत यानी स्त्री लोग सिर्फ रोना ही रोना, खाली कांदे खाली कांदे, शेर का बच्चा शेर, राजा का बेटा युवराज कुछ मन में ना। जाओ बेटा प्रेम से जाओ, साथ में जाएगा मंत्री का बेटा, कोतवाल का बेटा, तुम्हारा दोस्त चेउरा, और पीछे जाएगा 100 सिपाही घोड़सवार। तो खन रानीरा बोले, तो बे जाओ बादशाह जाओ।

सात दुनी चौदह उंगली में दैयर फोटा। अरे दही दही युवराजर कपाल खाना दोइये थही थही थही थही। टगबक सादा घोड़ा राजपुत्र, टगबक काला घोड़ा मंत्री पुत्र, टगबक लाल घोड़ा कुतवार पुत्र, और पीछे पीछे टगबक टगबक आटो साटो नाटा बटकल कड़ाजान मजबूत टट्टी घोड़ा सौ सिपाही। तो कौन

नहीं तो क्या, कोतवाल साहब का हुक्म था, जय जय बोलते हबे, फूल फैलते हबे, नहीं तो आर ओई फूलेर जो तो व्यवसादार आछे ना कारबारी, सब का साथ कोतवाल साहब का बंदोबस्त कमीशन का। हाँ तो रास्ता

0: लाखों।
1: ये तो सहज कथा बाबूजी, सीधी बात, खाने वाला राजा तो खिलाने वाला प्रजा। हाँ, राजा खाबे तो खावे प्रजा, और के से कथा अपनी हमी मेने निलम। मेने मेने जवान होलाम, बुढ़ा होलाम, किंतु बच्चा लोग बुद्ध आछे बुर्बक बोले
2: केन खाओ बापू,
1: किस लिए? अरे बुद्ध बेटा, हमको कौन खिलाता कौन पिलाता, बोलो बापू कौन? हाय बेटा, ये भी नहीं मालूम, हमको खिलाता हमको पिलाता भगवान। बुद्ध बेटा तब भी समझे ना, फिर पूछे तो भगवान खिलाता भगवान पिलाता तो हमरा राजा के किस लिए खिलाबो पिलाबो? हाय बेटा, राजा भी भगवान बुद्धू, भगवान का बेटा भगवान होच्छे राजा। भगवान के लाए हमरा के तो हमरा की लाई भगवान के, सच्ची है ये बात बेटा, चलो ये बात मन मन के। तो खाना होलो पीना होलो आराम होलो, फिर सकाल बेला सुबह सुबह को चले सवा टकबक शोर मचा के धूल उड़ा के संगे नीलो तीन लड़कियां गांव से। तो देखो बाबू साहब, हिसाब पक्का, राजा का बेटा, मंत्री का बेटा, कोतवाल का बेटा, तीन हुआ कि नहीं? तो यही तीन जने सेवा करबे, पांव दबाबे, तीन लड़कियां, देवता की सेवा भगवान की पूजा, तीन देवता तीन लड़कियां, हिसाब पक्का। गड़बड़ कहाँ? गड़बड़ आपसे थोड़ा गड़बड़, 103 घोड़े और 103 सवार, लड़कियां कैसे जाए? मेयरा जाबे केमन करे, बैलगाड़ी करे जाबे कि पैदल जाबे तो देरी होबे। तो सादा घोड़ा काला घोड़ा लाल घोड़े पर दो दो सवार, उते भी देरी होए, 100 सिपाही आगे जाए, तीन पुत्र पीछे पड़े, थोड़ा बैठे थोड़ा रोके, फिर चले घोड़े टगबक टगबक, तीन लड़कियां पैदल फिरे गांव फिरे आसे। एतो सहज, गरीब का सिर नीचे ऊपर वाला सामने, तो ये ऊपर वाली थोड़ी आसे, ये तो लड़कियां से औरत नहीं चले, गांव में तो मर्द आछे ऊपर वाला, औरत का सिर नीचे। तो जब तीन लड़कियां पैदल फिरे गांव, खैर छोड़िए बाबूजी, ये दूसरी कहानी है। देखो क्या कहानी, ये कहानी भी नहीं आए, कहानी होती राजा की, प्रजार कखनो कोनो गल्प कोनो कहानी थकते परे। तो छोड़िए बाबूजी, भूल जान लक्ष्मी माई ये छोटी मोटी बात, तारचे चलें देखी। राजपुत्र दलबल लिए कत्तो दूर गेलो, गांव का उस पर खेती, खेती का उस पर गांव, फिर खेती फिर गांव, फिर नदी फिर गांव, फिर खेती फिर गहन वन गभीर अरण्य। रूपकथा मने पड़े माई जी, याद है बाबूजी, भारी जंगल सुनसान।

Hakte, dakte, चलते संभालते राजा का बेटा युवराज छुटे गेलो एक दिके अंधेराते हारिए गेलो। हाके सावधान, जवाब मिले ना। होशियार सावधान, कहाँ तुम लोग? जवाब मिले ना। राजपुत्र राजा का बेटा अकेला, भारी जंगल, अंधेरा जंगल, सुनसान जंगल, अकेला, बिल्कुल अकेला। घूमते घूम

थे, सादा घोड़ा तगत खत्म, राजा का बेटा निकला दम, न मिली खाना न कुछ पीना, कैसे मिलेगा गरीब बिना, अंधार दिन से अंधार रात, अंधार दिन से अंधार रात, अंधार रात। बाघ सीने ना राजार जात, हाँ बाघ तो जानवर से के राजा के प्रजा से पहचान में कैसे, तो नीचे घोड़ा बेंधे राजपुत्र तड़ी घड़ी उठे पेड़ का ऊपर, पेड़ पेड़ गाछ हाथे तरवाल, आंख खुला नींद बर्बाद, ज्योति आसे चीता ज्योति फूसे अजगर सांप, राजपुत्र जागे जगते रहे सामने बहुत लंबी रात, जागे जगते रहे। तो बाबूजी माई जी हम ही बेला थोड़ा पानी पिया से झट से, ज्योति आपसे परमिशन मिले अब हे। हाँ तो रात काट लो, सूरज उठ लो, सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी डाल पर फाके फाके, राजा का बेटा आंखें लाल शरीर दुखे दर्द बेथा, राजा का बेटा नीचे नाम लो तो हाय बाप, सादा घोड़ा मरे पड़या से, बहुत लंबी रास्ता दौड़ा, भारी जंगल में बहुत घूमा, ना मिला दाना ना मिला पानी, तो थका हुआ घोड़ा का जान खत्म, दौड़े दौड़े घूरे घूरे सादा घोड़ार दम शेष जान शेष। तो फटा फूटा गंदा कपड़ा मैला पोशाक, हाथे तलवार एक पा दो पा, युवराज चले पैदल, कुछ ना हो तब भी पानी तो चाहिए, राजा भगवान राजा देवता तब जल बिना बाँचे ना, पानी मिला कुंड का पानी, खाना मिली पेड़ का फल, राजा का बेटा पैदल ढूंढे घर का रास्ता, हेटे हेटे घरे रास्ता खोजे, वो जम्बूस्थान भूल गया, अम्बुफल भूल गया, मायर बैराम भूले गए थे, खाली खुदचे घरे रास्ता, घर का मतलब माँ नहीं बाप नहीं, घर का मतलब अच्छी खाना साफा कपड़ा गद्दी बिस्तारा। फिर रात आसे रात जाए, दिन आसे दिन जाए, फिर रात फिर दिन, दो दिन तीन दिन सात दिन, तो उस रोज फल मिलाना पानी मिलाना, सिर्फ जंगल ही जंगल, सूखा जंगल भारी जंगल, अंधेरा जंगल सुनसान जंगल। चलते चलते चलते चलते अचानक सूरज की रोशनी, अरे ये कैसे, अच्छा छोटी सी जगह जंगल साफ, खाली एकता बड़ो गाछ और तार नीचे एक झोपड़ी एक कुआं, कोई है जवाब मिलना, कोई है जवाब मिलना। राजपुत्र देखे दरवाजा खुला, राजपुत्र देखे कोई नहीं अंदर, सिर्फ गरीब का सामान फाटा फूटा थाला बाटी बर्तन, गरीब का बिस्तारा एक दो, गरीब का घर गरीब की झोपड़ी। राजपुत्र कुआं थे के जल तुले प्यास मिटालो, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, नहीं तो वो भी खेली तो गरीब तो खिलाने वाला, मगर है नहीं कुछ भी। सात रोज बहुत दुख बहुत कष्ट, कम खाना कम नींद, तो घर का सामने पेड़ का नीचे गाछेर छियाए राजा का बेटा युवराज सो गया, घुमाए पड़ लो आहा स्वप्ना स्वप्ना, कैसी स्वादिष्ट खाना, कैसा मीठा शरबत, कैसा नरम साफा गद्दे बिस्तारा, हा हा आराम करो, राजा का बेटा भगवान का बेटा सो जाओ, घुमाओ घुमाओ एक घंटा दो घंटे तीन चार, आराम आराम अभी उतारो धीरे से उतारो।

आसमान से आकाश तक नामो अभी धीरे धीरे चोख खोलो खोलो आंखें तो नौजवान एक लड़का छोटी धोती ऊपर नंगा नीचे नंगा हाथे कुड़ाली पासे लकड़ी मुँह के हाँसी चौके हाँसी नौजवान एक लड़का खाड़ा नौजवान एक लड़का तुम कौन हो आसमान से जमीन झटक से अरे जंगली आदमी जानवर आप बोलते जाना ना चिड़ के बोले राजा का बेटा तू है कौन हाँ राजा का बेटा शरीफ आदमी जंगली तो ना आसे से आमिर के आप बोलते जाने गरीब के तू कौन है तू हम हंस दिया नौजवान काठुरिया अच्छी काठुरिया काठ कोड़ानी माँ का काठ काठुरिया बेटा है हम अभी बोल तू कौन है देखो तुमसे फिर तू क्या तेरा आप बोलना नहीं आता आप बोलते जानिस ना आप क्या होता है रे आप नहीं जानता नहीं तो हम ही जानी तुम और तू माँ के बोली तुम और जंगल का जानवर जंगल का चिड़िया तादर बोली तू पूरा सब दोस्त आचे ना तुम भी मुझे तू बोले तो तू भी दोस्त बन गया बिल्कुल जंगली खाए छोड़ो भूख लगी बहुत हम हैं राजा का बेटा युवराज राजा युवराज वो सब क्या होता है रे अजीब ये राजा भी नहीं जानता राजा काके बोले सिटाओ जाने ना अरे ये जाएगा नाम क्या से नाम सुनथान जंगल तो इखान का राजा कौन आसे अरे राजा क्या आसे पहले वही तो बता अरे राजा राजा देवता भगवान अच्छा हंस दिया काठुरिया लड़का देवता यहाँ का देवता है आसमान देवता है सारे पेड़ देवता है जंगल का जानवर जंगल का चिड़िया इकानकार देवता अच्छी हामी और हमार काठ कुड़ानी माता क्या बोलेगा इस जंगली को बताइए बाबू साहब बोलिए माई जी क्या बोलेगा युवराज की बोल बे के भाई बहुत भूख लगी खाने के लिए कुछ मिलेगी बस सिर्फ यही निकली मुंह से शुद्ध यही कथा मुख दिए बेरिए गलो क्योंकि भूख खुदा गरीब की जैसे राजा की भी तैसी फर्क नहीं बिल्कुल कोनो तफत नहीं बस खाना होलो पीना होलो काठ कुड़ानी माँ फिर लो काठ कुड़ाए दिन गेलो रात एलो फिर दिन फिर रात दिन दिन दिन बहुत दिन राजा का बेटा राज राजेश्वर राजा का कुंवर युवराज काठुरिया बने गेलो नंगा गा नंगा पा हाथे कुड़ाली काठुरिया बेटा के बोले तू बोले भाई काठकुड़ानी माता के बोले तुम बोले माँ जंगल का जानवर के जंगल का चिड़िया के बोले तू बोले दोस्त कौन है राजा पिताजी कौन है रानी माताजी कहाँ है जम्बूस्थान क्या है अम्बुफल सब भूल गया एकदम भूले गया सब कुछ खाली घनसान जंगल।

0: तो ये है मेरी कहानी बाबू साहब। ए अमर गल्प आचे लक्ष्मी माई।
1: क्या
0: रूपकथा राजकुमारी ब्याह शादी? माफ कीजिए, उसब हमी कुछ जानी ना। शुद्ध एकटा कथा जानी, अगर घर का रास्ता मिल जाता, फिर मिले जो तो यदि राजमहल पुलाव कोरमा मीठा शरबत गद्दी बिस्तर रेशम पसम सोना चांदी, मिले जो तो यदि खिलाने वाला गांव का गरीब, तो लात मार तो काठुरिया भाई के, लात मार तो काठ पुरानी माँ के। लेकिन रास्ता भूल गया, रास्ता भूले गए से तो की कर बे। तेरा एक बात सोचिए बाबू मसाई, एकटा कथा एक भेबे देखें लक्ष्मी माई। वो जो रास्ता जंगल का रास्ता काठुरिया का झोपड़ी तक, वो भूल रास्ता छिलो? ये वही छिलो ठीक रास्ता। भाई बोलने का रास्ता, माँ बोलने का, दोस्त बोलने का रास्ता ठीक है कि लात मारने का रास्ता ठीक है? भाई बोलबार, माँ बोलबार, दोस्त बोलबार रास्ता ठीक आछे कि लात मारबार रास्ता ठीक आछे? जरा सा भाभी देखें बाबू साहब, सोच लीजिए माई जी। मेरा खेल अभी खत्म, दो चार पैसा उसे सिक्की अदली इस कपड़े में डाल देंगे तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।

0: till tomorrow. Furthermore, heat wave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak river has crossed the danger mark by 2 centimetres. More from our correspondent.
1: As the water level of the Gandak River continues to rise, 1,83,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन. समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया. भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान. आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा. ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना. अब समाचार विस्तार से. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है. श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा. साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा. इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा. श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा. उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे. भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा

0: कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली

0: याद खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
1: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
2: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
3: The Security Council has been ineffective.
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
3: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन

0: नौ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार रोम साय प्रणाम लक्ष्मी माई सलाम बड़े मिया नमस्ते सेठ जी गुड इवनिंग सर मैडम जय हो पंडित जी जय हो जय हो जय हो आपने का भीख मांगसी बाबूजी माँ लक्ष्मी लक्ष्मी माई ना ना सोना चांदी कुछ ना भीख मांगसी एक मन दीबें कान दीबें कने सुने मने लिबें एक गल्प एक कहानी कने सुनबें मने धरबें हाँ हाँ बांगला गल्प हम तो बंगाली आछी तब ए राष्ट्रभाषा हलो ना तई थोड़ा कुछ हिंदी बोली खिचड़ी खान ना खिचड़ी ये भी खिचड़ी आसे माफ कर लिबें बाबूजी लक्ष्मी माई लिखाई पढ़ाई शिखलम ना बिल्कुल काज काम जानलम ना तई खिचड़ी भाषा खिचड़ी कहानी यही हमार रुजी रोजगार जदि शुने भलो लागे जदि दिल खुश हो जाए तब ना ना सोना चांदी मांगबो ना फिर दो चार पैसे सीखी आदमी दया करे गरीब के अरे हे झन नन नन नन नन नन नन नन डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा झन नन नन नन नन नन नन नन डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा कुर डैम कुड़ा हाँ एक था राजा माने एक छिलो राजा हाँ जी वही पुरानी कहानी से जाना सुना गल्पो की करब बोलें राजा छाड़ा कहानी होए ना इतिहास खुलिए देखें इतिहास इतिहास हिस्टोरी नहीं बाबूजी हम ही नहीं अपनारा देखें हमार पढ़ाशुना जाना नहीं बिल्कुल अपनारा किताब खुलिए देखें सब राजा रानी गल्पो राजा रानी कहानी राम युधिष्ठिर अशोक हर्षवर्धन अकबर जहांगीर नेपोलियन विक्टोरिया अपनी हम ही तो प्रजा आछी प्रजा हमारे कहानी कुछ आछी इतिहास किताबे बोलें बोल भाई कहानी।

एक था राजा, एक छिलो राजा। राजा राज राजेश्वर बादशाह नवाब सुल्तान किंग एम्पोरर, बहुत बड़ा राजा। घोड़ा साले 7,000 घोड़ा, हाथी साले 700 हाथी, रानी साले 7 जोड़ा रानी। और क्या से हीरा मोती सोना चांदी रेशम पश्चम किंगखब जोड़ी लूची पोलाव कुरमा कारी। और क्या से मंत्री कतवाल पत्तर मित्र के रानी पेशकार सिपाही संतरी नौकर चाकर दासी बांदी। जय हो राजा।

तो राजार बेटा राजार कुंगार राजपुत्र युवराज खूबसूरत नौजवान बदलन मालिक के नौजवान भालो चेहरा गोरा चेहरा जवान बॉयस जेमन हो यार की रूप कथा तो सुनिए ना ओमनी राजा का बेटा खूबसूरत नौजवान युवराज। तो एक दिन एक रोज राजा देखे बोलें बेटा कुंगार कुंगार हेके बोले हाँ जी पिताजी महाराज जरा इधर आना डाकिएछेन तो जेते होबे छेले तो बापेर सम्पत्ति आछे ना राजार बेटा राजार सम्पत्ति अपना सामान जैसा कि राजार रानी राजार हाथी राजार घोड़ा नौकर चाकर दासी बांदी। कुमार असलेन हाँ जी पिताजी महाराज फरमाइए हुकुम करें। बेटा सात दुनी 14 रानी तुम्हार 14 माँ तार मध्य रानी रानी पाठ रानी बड़ी रानी तुम्हार गर्भधारिणी ठीक है कि नहीं। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक। तार बैराम हाय ये क्या बात। हाँ हाँ बैराम रोग असुख तबीयत गड़बड़ की असुख कौन सा बैराम। अरुचि मुखे कुछ रोचे ना ना बिरयानी ना कोफ्ता ना पिस्ता ना अखरोट ना रोटी ना सब्जी ना मीठा ना खट्टा शुद्ध एक चीजें जन्ने तार जान अनजान परान उथाल पथाल की चीज बोलें पिताजी महाराज। फल अटे बेटा फल फ्रूट कौन फल कौन सा फ्रूट। से फल इखाने मिले ना बहुत दूर से लाना पड़ेगा अनेक दूर थे के आनते होबे। फरमाइए आमी अखुने लानबो फारन ला दूंगा कौन देश कहाँ का फल। बेटा जम्बुस्थान का अम्बू फल। आहा जम्बुस्थान बहुत दूर देश बहुत खतरनाक रास्ता खतरनाक समझा ले माई जी बाबू जी विपद विपद पथे विपद आछे रास्ता डेंजरस। तब भी युवराज तगड़ा नौजवान कल कल खल कल हंस दिया ऐसे दिल लो बाबू जी यही बात यही कथा। अरे जम्बुस्थान तो इस पार का उस पार वो तो घरे दौरे आछे पाए हाँट ले 3 मास अगर पैदल 3 महीना तो टकाबाग घोड़ा 15 दिन। सुने राजा बोले शाबाश बेटा शेर का बच्चा शेर। अरे बाघेर बच्चा बाघ होवे ना तो की होवे। लेकिन रानी माता बोले नहीं बेटा नहीं मेरा लाल बहुत दूर बहुत खतरनाक मत जाना। और तेरा रानी बोले ओ राजपुत्र का तेरा सतीन माता नहीं बेटा नहीं मेरा लाल बहुत दूर बहुत खतरनाक मत जाना। रानी माता बोले जायो ना बेटा रहो एकान अम्बु फल खाबो नहीं जाए जा प्राण। और तेरा सतीन माता बोले ना जाना बेटा छोड़ो जम्बुस्थान अम्बु फल क्या होगा जाने दो वो जान। तो युवराज क्या अलबत जाओ हरगिज जाना अम्बु लाना माँ को देना फल खिलाना अशोक बैरम सब भगाना। राजा बोले सवाल बेटा सर का बच्चा आदमी सच्चा दिल भी अच्छा ये औरत की बात मत सुनो बेटा। औरत यानी स्त्री लोग सिर्फ रोना ही रोना खाली कांदे खाली कांदे शेर का बच्चा शेर राजा का बेटा युवराज कुछ मन में ना जाओ बेटा प्रेम से जाओ। सास में जाएगा मंत्री का बेटा कोतवाल का बेटा तुम्हारा दोस्त आ चेउरा और पीछे जाएगा 100 सिपाही घर सवार। तो खन रानी रा बोले तबे जाओ बादशाह जाओ तरवा।

सात दुनी 14 उंगली में दैयर फोटा। अरे दही दही युवराजर कपाल खाना दोइये थही थही थही थही। टगबग सादा घोड़ा राजपुत्र, टगबग काला घोड़ा मंत्री पुत्र, टगबग लाल घोड़ा कुतवार पुत्र, और पीछे पीछे टगबग टगबग आटो साटो नाटा बटकल कड़ाजान मजबूत टट्टी घोड़ा सौ सिपाही। तो कौन

नहीं तो क्या, कोतवाल साहब का हुक्म था, जय जय बोलते हबे, फूल फैलते हबे, नहीं तो आर ओई फूलेर जो तो व्यवसायदार आछे ना कारबारी, सब का साथ कोतवाल साहब का बंदोबस्त कमीशन का। हाँ तो रास्ते

0: लाखों।
1: ये तो सहज कथा बाबूजी, सीधी बात, खाने वाला राजा तो खिलाने वाला प्रजा। हाँ, राजा खाबे तो खावे प्रजा, और के से कथा आपनी हमी मेने निलम। मेने मेने जवान होलाम, बुढ़ा होलाम, किंतु बच्चा लोग बुद्ध आछे बुर्बक। बोले
2: केन खावो बापू,
1: किस लिए? अरे बुद्ध बेटा, हमको कौन खिलाता कौन पिलाता? बोलो बापू कौन? हाय बेटा, ये भी नहीं मालूम, हमको खिलाता हमको पिलाता भगवान। बुद्ध बेटा तब भी समझे ना, फिर पूछे तो भगवान खिलाता भगवान पिलाता तो हमरा राजा के किस लिए खिलाबो पिलाबो? हाय बेटा, राजा भी भगवान बुद्धू, भगवान का बेटा भगवान होच्छे राजा। भगवान के लाए हमरा के तो हमरा की लाई भगवान के, सच्ची है ये बात बेटा, चलो ये बात मन मन के। तो खाना होलो पीना होलो आराम होलो, फिर सकाल बेला सुबह सुबह को चले सवा टकबक शोर मचा के धूल उड़ा के संगे नीलो तीन लड़कियां गांव से। तो देखो बाबू साहब, हिसाब पक्का, राजा का बेटा, मंत्री का बेटा, कोतवाल का बेटा, तीन हुआ कि नहीं? तो यही तीन जने सेवा करबे, पांव दबाबे तीन लड़कियां, देवता की सेवा भगवान की पूजा, तीन देवता तीन लड़कियां, हिसाब पक्का। गड़बड़ कहाँ? गड़बड़ आपसे थोड़ा गड़बड़, 103 घोड़े और 103 सवार, लड़कियां कैसे जाए? मेयरा जाबे केमन करे? बैलगाड़ी करे जाबे कि पैदल जाबे तो देरी होबे। तो सादा घोड़ा काला घोड़ा लाल घोड़े पर दो दो सवार, उते भी देरी होए, 100 सिपाही आगे जाए, 3 तुत्तर पीछे पड़े, थोड़ा बैठे थोड़ा रोके, फिर चले घोड़े टगबक टगबक, तीन लड़कियां पैदल फिरे गांव आसे। एतो सहज, गरीब का सिर नीचे ऊपर वाला सामने, तो ये ऊपर वाली थोड़ी आसे, ये तो लड़कियां से औरत नहीं चले, गांव में तो मर्द आचे ऊपर वाला, औरत का सिर नीचे। तो जब तीन लड़कियां पैदल फिरे गांव, खैर छोड़िए बाबूजी, ये दूसरी कहानी है। देखो क्या कहानी, ये कहानी भी नहीं आए, कहानी होती राजा की, पर जार कखनो कोनो गल्प कोनो कहानी थकते पड़े। तो छोड़िए बाबूजी, भूल जान लक्ष्मी माई ये छोटी मोटी बात, तारचे चलें देखी। राजपुत्र दलबल लिए कत्तो दूर गेलो, गांव का उस पर खेती, खेती का उस पर गांव, फिर खेती फिर गांव, फिर नदी फिर गांव, फिर खेती फिर गहन वन गभीर अरण्य। रूपकथा मने पड़े माई जी, याद है बाबूजी, भारी जंगल सुनसान।

राजपूत तरह के सावधान, मंत्री पुत्र तरह के बच के, कोतवाल पुत्र तरह के होशियार, सिपाही हाके संभाल के।

Hakte, hakte, dakte, dakte, चलते चलते संभालते संभालते राजा का बेटा युवराज छुटे गेलो एक दिके अंधेराते हारिए गेलो। हाके सावधान, जवाब मिले ना। होशियार सावधान, कहाँ तुम लोग, जवाब मिले ना। राजपुत्र राजा का बेटा अकेला, भारी जंगल, अंधेरा जंगल, सुनसान जंगल, अकेला, बिल्कुल अकेला। घूमते घूमते सादा घोड़ार ताकत खत्म, राजा का बेटार निकला दम। ना मिली खाना ना कुछ पीना, कैसे मिलेगा गरीब बिना। अंधार दिन से अंधार रात, अंधार दिन से अंधार रात, अंधार रात। बाघ चिने ना राजार जात। हाँ, बाघ तो जानवर से के राजा के प्रजा से पहचान में कैसे। तो नीचे घोड़ा बेंधे राजपुत्र तड़ी घड़ी उठे पेड़ का ऊपर, पेड़ पेड़ गाछ, हाथे तरवाल, आंख खुला, नींद बर्बाद। ज्योति आसे चीता, ज्योति फूसे अजगर सांप। राजपुत्र जागे, जगते रहे, सामने बहुत लंबी रात। जागे जगते रहे, तो बाबूजी माई जी हमी यही बेला थोड़ा पानी पिया से झट से, ज्योति आपसे परमिशन मिले। अब हे तो रात काट लो, सूरज उठ लो, सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी डाल पलार फाके फाके। राजा का बेटा आंखें लाल, शरीर दुखे, दर्द बेथा। राजा का बेटा नीचे नाम लो तो, हाय बाप, सादा घोड़ा मरे पड़िया से। बहुत लंबी रास्ता दौड़ा, भारी जंगल में बहुत घूमा, ना मिला दाना ना मिला पानी, तो थका हुआ घोड़ा का जान खत्म। दौड़े दौड़े घूरे घूरे सादा घोड़ार दम शेष, जान शेष। तो फटा फूटा गंदा कपड़ा मैला पोशाक, हाथे तलवार, एक पा दो पा युवराज चले पैदल। कुछ ना हो तब भी पानी तो चाहिए, राजा भगवान राजा देवता तब जल बिना बाँचे ना। पानी मिला कुंड का पानी, खाना मिली पेड़ का फल। राजा का बेटा पैदल ढूंढे घर का रास्ता, हेटे हेटे घरे रास्ता खोजे। वो जम्बूस्थान भूल गया, अम्बुफल भूल गया, मायर बैराम भूले गए थे, खाली खुदचे घरे रास्ता। घर का मतलब माँ नहीं, बाप नहीं, घर का मतलब अच्छी खाना, साफा कपड़ा, गद्दी बिस्तारा। फिर रात आसे रात जाए, दिन आसे दिन जाए, फिर रात फिर दिन, दो दिन तीन दिन सात दिन। तो उस रोज फल मिलाना, पानी मिलाना, सिर्फ जंगल ही जंगल, सूखा जंगल, भारी जंगल, अंधेरा जंगल, सुनसान जंगल। चलते चलते चलते चलते अचानक सूरज की रोशनी। अरे ये कैसे, अच्छा छोटी सी जगह जंगल साफ, खाली एकटा बड़ो गाछ और तार नीचे एक झोपड़ी एक कुआं। कोई है, जवाब मिलना। कोई है, कोई है, जवाब मिलना। राजपुत्र देखे दरवाजा खुला, राजपुत्र देखे कोई नहीं अंदर, सिर्फ गरीब का सामान, फाटा फूटा थाला बाटी बर्तन, गरीब का बिस्तारा एक दो, गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी। राजपुत्र कुआं थे के जल तुले प्यास मिटालो, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, नहीं तो वो भी खेली तो, गरीब तो खिलाने वाला, मगर है नहीं कुछ भी। सात रोज बहुत दुख बहुत कष्ट, कम खाना कम नींद। तो घर का सामने पेड़ का नीचे गाछेर छियाए, राजा का बेटा युवराज।

हो गया, घुमाए पुर लो। स्वप्ना स्वप्ना, कैसी स्वादिष्ट खाना, कैसा मीठा शरबत, कैसा नरम साफा गद्दे बिस्तारा। आराम करो, राजा का बेटा भगवान का बेटा, सो जाओ, घुमाओ घुमाओ, 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, आराम आराम। अभी उतारो धीरे से, उतारो आसमान से, आकाश के नामो अभी धीरे धीरे। चोख खोलो, खोलो आंखें। तो नौजवान एक लड़का, छोटी धोती, ऊपर नंगा नीचे नंगा, हाथे कुड़ाली पासे लकड़ी, मुँह के हाँसी चौके हाँसी, नौजवान एक लड़का, खाड़ा नौजवान एक लड़का। तुम कौन हो? आसमान से जमीन झटक से, अरे जंगली आदमी जानवर, आप बोलते जाना ना। चिड़ के बोले, राजा का बेटा, तू है कौन? हाँ राजा का बेटा, शरीफ आदमी, जंगली तो ना आसे, से आमिर के आप बोलते जाने, गरीब के तू, कौन है तू? हम, हंस दिया नौजवान, काठुरिया हसी काठुरिया, काठ कोड़ानी माँ का काठ काठुरिया बेटा है हम। अभी बोल तू कौन है? देखो तुमसे फिर तू, क्या तेरा आप बोलना नहीं आता? आप बोलते जानिस ना, आप क्या होता है रे? आप नहीं जानता? नहीं तो हम ही जानी, तुम और तू, माँ के बोली तुम, और जंगल का जानवर, जंगल का चिड़िया, तादेर बोली तू, पूरा सब दोस्त आचे ना, तुम भी मुझे तू बोले तो तू भी दोस्त बन गया। बिल्कुल जंगली, खाए छोड़ो, भूख लगी बहुत। हम हैं राजा का बेटा युवराज। राजा युवराज, वो सब क्या होता है रे? अजीब, ये राजा भी नहीं जानता, राजा काके बोले सिटाओ जाने ना। अरे ये जाएगा नाम किया से, नाम सुनथान जंगल, तो इखान का राजा कौन आसे? अरे राजा क्या आसे, पहले वही तो बता। अरे राजा राजा देवता भगवान। अच्छा, हंस दिया काठुरिया लड़का, देवता, यहाँ का देवता है आसमान, देवता है सारे पेड़, देवता है जंगल का जानवर, जंगल का चिड़िया, इकानकार देवता अच्छी हामी और हमार काठ कुड़ानी माता। क्या बोलेगा इस जंगली को, बताइए बाबू साहब, बोलिए माई जी, क्या बोलेगा युवराज, की बोल बे के? भाई बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ मिलेगी? बस सिर्फ यही निकली मुंह से, शुद्ध यही कथा मुख दिए बेरिए गलो, क्योंकि भूख खुदा, गरीब की जैसे राजा की भी तैसी, फर्क नहीं बिल्कुल, कोनो तफत नहीं, कोनो तफत नहीं। बस खाना होलो, पीना होलो, काट कुड़ानी माँ फिर लो, काट कुड़ाए, दिन गेलो, रात एलो, फिर दिन, फिर रात, दिन दिन दिन, बहुत दिन। राजा का बेटा राज राजेश्वर, राजा का कुंवर युवराज काठुरिया बने गेलो, नंगा गा नंगा पा, हाथे कुड़ाली, काठुरिया बेटा के बोले तू, बोले भाई, काठकुड़ानी माता के बोले तुम, बोले माँ, जंगल का जानवर के, जंगल का चिड़िया के बोले तू, बोले दोस्त। कौन है राजा पिताजी, कौन है रानी माताजी, कहाँ है जम्बूस्थान, क्या है अम्बुफल, सब भूल गया, एकदम भूले गया सब कुछ, खाली सनसन।

तो ये है मेरी कहानी बाबू साहब। ए अमर गल्पो आचे लक्ष्मी माई। क्या रूप कथा राजकुमारी ब्याह शादी? माफ कीजिए, उसब हमें कुछ जानी ना, शुद्ध एकटा कथा जानी। अगर घर का रास्ता मिल जाता, फिर मिले जो तो यदि राजमहल पुलाव कोरमा मीठा शरबत गद्दी बिस्तरा रेशम पसम सोना चांदी, मिले जो तो यदि खिलाने वाला गांव का गरीब, तो लात मार तो काठुरिया भाई के, लात मार तो काठ पुरानी माँ के। लेकिन रास्ता भूल गया, रास्ता भूलेगा से तो की करबे। तेरा एक बात सोचिए बाबू मशाई, एकटा कथा एक भेबे देखें लक्ष्मी माई। वो जो रास्ता जंगल का रास्ता काठुरिया का झोपड़ी तक, वो भूल रास्ता छिलो, ये वही छिलो ठीक रास्ता। भाई बोलने का रास्ता, माँ बोलने का, दोस्त बोलने का रास्ता ठीक है कि लात मारने का रास्ता ठीक है? भाई बोलबार, माँ बोलबार, दोस्त बोलबार रास्ता ठीक आछे कि लात मारबार रास्ता ठीक आछे? जरा सा भाभी देखें बाबू साहब, सोच लीजिए माई जी। मेरा खेल अभी खत्म, दो चार पैसा उइसा सिक्की अदली इस कपड़े में डाल देंगे तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।

आईसी समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्था

0: अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं।
1: Great deal for both sides. We have very complementary economies.
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है, और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान

0: अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमे मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন অনুষ্ঠান কথায় গানে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্র হচ্ছে আমাদের শুদ্ধ চেতনাকে জাগরিত করার অপ্রাকৃত পন্থা। আজ কথায় গানে অনুষ্ঠানে শোনাব কীর্তন, নাম সংকীর্তন। অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণ করার ফলে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিদরিত হয়। হৃদয়ের সমস্ত কলুষের মূল কারণ হচ্ছে সব কিছুর ওপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত বাসনা। কৃষ্ণ ভাবনামৃত মনের উপর কোনো কৃত্রিম প্রক্রিয়ার আরোপ নয়, এই চেতনা জীবের মৌলিক এবং স্বাভাবিক বৃত্তি। আমরা যখন এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করি তখন আমাদের এই চেতনা জাগরিত হয়। সেই 8টি দিব্য আনন্দ বা চেতনা কথা বলবো, তার আগে অদিতি মুন্সির কণ্ঠে নাম সংকীর্তন।